जो तुत भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितन आवन नानकिया बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई है भी होसी चाय न चासी रचन चिन रचाई रंगी रंगी पाती कर का चिंसी माया चिन उपाय कर का देखे कीता अपना ज्योतिष दी वडियाई ज्योतिष भावे सोए करसी फिर हुक्म न करना चाहे सो पत सा सहा पत साहेब नानक रहन रजाए आसा महला पहला सुन वड़ा आके सब कोय के वड़ वड़ा डिठा होए कीमत पाए न कहया चाहे खाने वाले तेरे राहे समाए वड़े मेरे साहेबा के हाकुम पीरा कुनी कहीरा कोय न जाने तेरा खेता केवत चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहन चाई तेरे तिल वडियाई सब सत सब थप संग छंगियाईया सिद्धा पुरका किया वडियाईया तुद विन सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही थक रहाया अखन वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसै किया चारा नानक सच सवारना

को होए जेवद आप थेवद तेरी दाद जिन दिन खाके की तीरा खसम वसारे ते कमचार नानक नावे पाच सुनात राग गुजरी महला छोता हर के चंद सतगुर सतपुरखा बिनो करो कृपास हम खीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रकाश मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्रण सकाई हर कीरत हमारी रहरास रहाओ हर जन के वड बाग वदेरे जिन हर हर सरद हर प्यास हर हर नाम लय त्रिपता से मिल संगत कुन प्रकाश जिन हर हर हर रास नाम ना पाया थे बगहीन जम्पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिक जीवे त्रिक जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन दो मस्तक लखिया लकास धन धन सत संगत जिन हर रास पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवे उदम जा हर हर जियो परिया सैल पत्र में चंद उपाय था कर जक अगे कर धरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पट पाया सुखे खसत हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बिनता कोई न खिसकी तरिया सिर सिर रिचक संभाए ठाकुर काहे मन बो करिया उड़े उड़ अवैसे कोसा तिस बच्चे बछरे चरिया तिं कवन कलावे कवन चुकावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस असत सिदान ठाकुर खल थल दरिया जन नानक बल बल सत बल चाहिया तेरा अंत न पारा वरिया रागा सा महला छोटा सो पुरख इकोंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुत जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दत्तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी किया नानक चंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक बेकारे जी सब तेरी छो जुविडाना तू आपे दाता आपे पुखता जी हो तुत बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे किया गुण आकव खाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुग पाए जिन हर त्याया जी तिन तूती चमकी फासी जिन निर्भो जिन हर निर्भो त्याया जी तिन का बो सब कवासी

आया जी, जन नानक थिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरी भगत सलाहन तुत जी, हर अनेक नेक नंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, थप थापे चपे बेअंता, तेरी अनेक परे बो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया कट कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो बावे मेरे हर भगवंता, तू आज पुरख परंपर कथा जी, तुद जेवद अवर ना कोई, तू जुग

मन एक न छेछा समूर मना हर बिसरत तेरे गुण कलिया रहाओ नाहु जति सती नहीं परिया मूर्ख मुक्त जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा बाए परापत मनुख ते होरिया गोबिंद मिलेंकिए तेरी परिया अवर काज तेरे कीते न काम मिल साध संग पच केवल नाम सरन चम लग भव चल तरन कै चनन ब्रिता चात रंग माया कै रहाओ जप तप

आसा, थोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हे चा कोई अवर न द्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सी कहमारे तरिया, चुन चुन सत्र हमारे मरिया, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मलन का कतरा सनवरिया, हु जो सदा हमारी पच्चा, सिरिया सुजू जू करियो रच्चा, राख लियो मोरा किनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंधु शरण के हंता, तुम हो पूरी चतुर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा पपतारा, काल पाए शिव जू अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा चुथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत पनायो, देव तै चचन उपचायो, आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुकतियो, सचरन को भल मोहबत कियो, गट गट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पचानत, चित्ती ते कुंचर असतुल्ला, सब भर कृपा दृष्ट कर फुल्ला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए सधन के सुखी, एक एक की पीर पचाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उत्कर्क खरा कर तारा, प्रजा थर तब दे अपारा, जब खरक करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे दर सब हूँ, जेते बदन श्री सब तारे, आप आपने बूझ उचारे, तुम सब ही थेरा।

जानत महामूर्ख च भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंका का चीनत नह आप आपने बुद्ध है चेती वर्णत भिन्न भिन्न तोई तेती तुम्हारा लखा न चाहे पसारा खेबिद सच प्रतन संसारा एके रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो रवका ही पुप्पा अंतच चेरच सेत चकीनी उत्पूच खान बहु रचतीनी कहो फुल रजव है बेटा कहो सिमट पयो संक एकेटा सगरी श्रेष्ठ काय अचंबा आद जुकाद स्वरूप सियंबा अब्रचा मेरी तुम करो सिक उबार असिक संघरो दुष्ट जिते उठवट उत्पाता सकल मलेच करो रन गाता जे अस दुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट कर हवे मरे पुरक चवन पग परे तिहारे तिनके तुम संगत सब तारे जो कल को एक बार दिया है ताके कल निकत न है रचा होए थाए सब कला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्कला कृपा दृष्ट चन जाए निहार हो ताके थपत नकमो हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चा छवे सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संबारा काल फास्ते ताई उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट तोक तेरा करक खेद में सरन तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व थोर मोह हो सहाय दुष्ट तोक ते ले हो पचाई कृपा करी हम भग चक माता ग्रंथ करा पूरन सबराता खिल बिक सकल ते को हरता दुष्ट दोगियन को छे करता सिरियस दू चब बये त्याला पूर्ण कर ग्रंथ तत्कला मन बंश फल पावे सोई दुख नथ से पिया पत कोई हरियल सुने गुंग जो आई सुरस न पावई सुने मोर चित लाई चतरत आवई दुख तरत बोन खतना तिन नर के रह हो जो या कि एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत शस्त्र सह सब निजय अर्ध सस्वन तिन कहिजय भव द्रव सुधि अष्टमी रविवार तीर सत्र

जिस सिमरत सुकोए सगले दुख जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।